असंख मूर्ख अंध घोर संघ जोर राम घोर संघ अमर कर जाए जोर असंख गाल बढ़ हत्या कमाए संघ बाबी बाप कर जाए असंघ कूड़े आर कूड़े विराय असंख मलेश मल पाख खाहे संघ दसर करह भार नानक नीच कै विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुर पावै

संख्यात रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान करने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान करने नमो पूज पूजे नमो पार पाने नमो कला करता नमो छात्र रूपे

ताप निवारण हरा दुख अंतास सुख रास ताको बिघ्न को लागे जाके प्रभ आज्ञा अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी साहेब वाह श्री भगवत जी के पास शहीद दशमी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिरंगत कुते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौनित आवे थाए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंथ दे वाली सब थाई होए सहाय दसा पातशाह दी जोत तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दीदार दा ध्यान तिरके बोलो जी पंजा प्यारियां चह सब जादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख वाही देख के अंडिट कीता तिना प्यारे सच्चाई दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी जिना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरे नाल चीरे गए गुरुद्वारे की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नी हारिया सिखी केसा स्वासा नाल लबाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी पंजा तख्ता सुबत गुरुद्वारे दा ध्यान तरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियाय देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खास जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसार दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उची माता रखा अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ सदा सहाय दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शियो हे नमाण दे माण नताण दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरां दे आसरे आप जी दे उच्चे सुचे चरना कमला पास अरदास बेनती है गुरु पिता जी आप जी दे मेहना सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे बच्चियां ने रल मिल के आसा दीवार दे पाठ गायन कीते महाराज आप जी दा कोटान कोट शुकर है कोटान कोट शुकर है आप जी ने तरस करके सेवा बख्शी महाराज आप जी दे प्यारियां बच्चा दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के गुरमती सोजी विदे दे दान बख्शने महाराज जी खालसा पंथ की चढ़दी का बख्शनी पंथ विच एकता प्यार इतफाक बख्शना महाराज काम क्रोध लोभ झूठ निंदा चुगली ईरखा तो आप जी ने आप बचाना महाराज जी गुरबाणी जी दे अखर अखर आप जी साडे हिरदे विच बसाउणे इसे तरह सतसंगत दी इलाही कणियां बख्शनिया महाराज लेकै कते ना छुटिया खिन खिन भूलण हार बख्शन हार बख्श लै नानक पार उतार कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत यही तस करना महाराज अखर वादा काटा पुल चुक माफ करनी सर्वते कार रास करने से ही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आप जी दा नाम चितावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा तबै चलायो पंथ सबसे खण को

बिन मर जाया। माने अंतरहों में रोग प्रम पूले जो मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सजना। गुरमति हर हर बोले।

मधुमाया के अंदर कहु नानक बिनु हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख कहो चाहे सदा सरन राम की ले हाँ।

जन्म जन्म पर मत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास कहु नानक हर पज मना निरपै पा

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है, आठाओ नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही, पंच रागनी संग उचर ही, प्रथम भैरवी बिलावली, पुनिया की गाव है बंगली, पुन असलेख की पही बारी, भैरव की पंच औनारी, पंच महरख दसाख सुनाव है बंगालम, माध माधव गाव है, ललत बिलाव लगाव ही, अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है, गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आल अप है, संगरागनी पंच उथप है, गुण करी अरदेव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी तनासरी, ए पांचो गाई माल राग कौशक संगलाई, मारू मस्तंग मेवारा प्रवल चंड कौशक उभारा, खौखटे पौरानंद गाए अष्ट माल कौशक संगलाए, पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठ है, तान कलोल गायन तार मिलावही, ते लंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई, सरस अहीरी लै पार जा संगलाई, पांचो वार जा, सुरमानंद पास करो आए, चंद्र बिंब मंगलन सुहाए, सरस बान ओ आहे बिनोदा गावे, सरस बसंत कमोदा, आसठ पुत्र मैं कहे सवारी, पुन्य आई दीपक की बारी, कशेली पट मंजरी टोडी कही अला, का मोदी औ गुजरी, संग दीपक के थाप,

अठारह दस बीस वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद अनंत हया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावणियावो हरि तेरा मंजनी वसाया है नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया करसा तो सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटोह जिस दिया ए वड़ियाईया कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित करो अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ पागी हो।

संत साजन पए सरसे पूरे गुरते सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे भरपू बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे सलोक पवन गुरु पाणी पिता मात।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन संग अलप है अठौ नंदन प्रथम राग, भैरो वै कर ही पंच राग नि संग उचर ही।

पंच नार संग्यष्ट सुत उठै तान कलो गायन तार मिलावही। ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पहार जा संगे लाई पांचा वार जा सुरमानन तास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान आओ आहे बिनोदा गाव है सरस बसंत मोदा असट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कौशली पट

आसक्त पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वैगाव है पांचाओ संग बरंगन लाव है सोट गुण मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुनगुनी।

कर्म मिले नाही ठाकुर हैया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा।